सुहासिनी सुमधुरभाषिणी।

ये आकाशवाणी सागर है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आश्विन माह की छठवीं तिथि तदनुसार 28 सितंबर सन 2026 इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। आइए करें कुछ पल इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी सागर है। सुबह के 6:05 हुए हैं। ये वक्त अर्चना का है। अर्चना कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ।

अभी श्रोता भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण।

समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। आपको बताना चाहेंगे सुबह 6:30 पर आप श्री रामचरित मानस के संगीत में पाठ सुनेंगे। कुछ पुराने फिल्मी गीत होंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। वक्त सुबह 6:40। दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह लेकर आएंगे सुबह 7:00 और कृषि चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम कृषि संकेत होगा सुबह 7:05 पर। आपके फरमाइशी फिल्मी गीत सुबह 7:20 पर।

0: सुबह 7:45 पर आप आनंद लेंगे संगीत सरिता का। लोक संगीत आपके लिए होगा सुबह 8:15। 8:30 आज श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम बिंदिया।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: श्रोताओं सुबह 9:50 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। जिले की चिट्ठी सुबह 10:00 और 10:05 पर फोन करें लोक गीत सुने। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हमारे श्रोता सुनेंगे सुबह 11:00।
3: गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
0: शाम 5:02 पर श्रोता युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे। कुछ सदाबहार गीत होंगे शाम 6:30 पर। ग्राम सभा लेकर आएंगे शाम 7:20 पर। रात्रि 8:00 आप चित्रपट संगीत सुन सकते हैं। 8:20 पर आनंद लीजिएगा संगीत सरिता का। मनचाहे गीत कार्यक्रम रात्रि आप सुनेंगे 9:00। 10:00 सुनिएगा एशियन गेम्स 2026 हाइलाइट्स। रात्रि 11:00 होंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। श्रोता अभी कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। FM बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। 6:30 पर सोने को है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज आप इसकी 124वीं कड़ी सुनेंगे जिसमें मुख्य गायक स्वर ए हरिहरन का है।

बच्चों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधी तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बधाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे

के गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा, और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

अभी श्रोता श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। आज आपने इसकी 124वीं कड़ी सुनी, जिसमें मुख्य गायक स्वर था ए हरिहरन का। एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। 6:40 हुए हैं। ये समय कुछ पुराने फिल्मी गीत आप तक पहुंचाने का है। कार्यक्रम का नाम है भूले बिसरे गीत। जी हाँ, आज एक जानी मानी तारीख और एक जानी मानी हस्ती, जिसे भारत में कोकिला नाम से भी जाना जाता है, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर जी ने आज ही के दिन जन्म लिया और पूरे संगीत जगत को एकदम रोशन कर दिया। आइए सुनिए पहला गीत फिल्म मधुमति से, आवाज लता मंगेशकर की।

न जाने कितनी पीढ़ियां हैं जो लता जी की आवाज की दीवानी हैं, और न जाने कितनी पीढ़ियां और आएंगी जो लता जी के गीत गुनगुनाती रहेंगी। एक और बहुत प्यारा सा गाना फिल्म मनमौजी से आपके लिए लेकर आए हैं। राजेंद्र कृष्ण ने गीत को लिखा, मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया, और ये प्यारी सी आवाज लता मंगेशकर की।

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

लता मंगेशकर जी अपने गीतों के रूप में हमको वो सौगात देकर गई हैं कि आप और हम जीवन भर उनके गीतों को गुनगुनाते रहेंगे। आइए सुने लता जी के ही स्वर में एक और गाना, जो है फिल्म अनीता से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ये बोल हैं राजा मेहंदी अली खां के।

लता मंगेशकर वो आवाज है जिसे ना कभी कोई भूला है और ना कभी कोई भूल पाएगा। आज आपने इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर की आवाज में चंदनक में सुने। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जो अनुप्रसारित होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए प्रतीक्षा करें।

0: वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। ह्यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। षोडशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सितंबर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सैन्यबलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमा रेखां विलंघ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संप्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिंदूराभियानस्य आधारशिलां अरचयत्।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्यप्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरम् आसीत्। सः 28-29 वर्षस्य सितंबर मासे दिल्ल्यां सम्भूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 6/11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टम् उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः सम्प्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगिततां अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मंत्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयं अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये संदेशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय संबंधान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मंत्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च संबंधानां दृढ़ीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20/26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रिय कृषि सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। कृषि मंत्रालयः प्राह यत् अस्य सम्मेलनस्य मुख्यं उद्देश्यं तावत् केन्द्र राज्ययोः पारस्परिकं समन्वयं विधाय कृषि उत्पादनस्य उत्पादकतायाः कृषकाणां आयस्य च संवर्धनार्थं एकां नीतिं रचयितुम् अस्ति। भारत निर्वाचन आयोगः दिल्ल्यां संप्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण योजनायाः काल विपर्ययम् अकरोत्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां विराट कोहली शुभमन गिल इत्येतयोः भव्येन शतकेन गतरात्रौ तिरुवनन्तपुरम नगरे प्रथमायाम् एकदिवसीय क्रीडायां वेस्टइंडीज दलं पराभूय भारतेन 8 स्तोभैः विजयं समधिगतम्। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। श्रोताओं, सुबह के 7 बजे हैं, आपको इंतजार होगा कार्यक्रम सुबह सुबह का। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: श्रोताओं, आज बात करते हैं सुंदरता की। वैसे तो हमने मन की सुंदरता और तन की सुंदरता, इन दोनों का जिक्र खूब सुना है। हम ये भी जानते हैं कि मन की सुंदरता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से सुंदर है वो सबके लिए एक खास इंसान होता है, वो लोगों की प्रशंसा के लायक बन जाता है। तन की सुंदरता होती तो है, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, इसलिए तन की सुंदरता से अधिक मन की सुंदरता व्यक्तित्व के लिए महत्व रखती है। आप हम सब जानते हैं कि तन की सुंदरता अस्थिर है, लेकिन मन की सुंदरता जीवन की अंतिम सांस तक ही नहीं, बल्कि जीवन पर्यंत भी लोगों के लिए प्रेरणा बनकर सदा सदा जीवंत बनी रहती है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये पूरी तरह से सुंदरता का बोध कराता है। इसका अभिप्राय है कि जो सत्य है वास्तव में वही कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही सही मानों में सुंदर है। इसलिए सौंदर्य बोध को केवल तन की सुंदरता से आकलन कर लेना कभी भी तार्किक है ही नहीं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि वर्तमान में ये देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को दूसरों से अधिक सुंदर दिखने की एक अवधारणा सी पैदा हो गई है। इसलिए आपने भी ये महसूस किया होगा कि अब फुर्सत के क्षणों में अपने करियर या जन कल्याण की बातों की बजाय सुनने में आता है कि बाजार में आने वाले नए फैशन के उत्पादों की जानकारी लोग एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। इसी वजह से नैतिक मूल्यों में भी लगातार गिरावट महसूस की जा रही है। लोगों में नैतिक मूल्य बने रहें और वो सुंदरता का वास्तविक अर्थ पहचाने, इसके लिए आप हम सबको कुछ कोशिश जरूर करनी होगी। वर्तमान में सौंदर्य की सही परिभाषा समझने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो सौंदर्य का बोध प्रकृति से भी हो जाता है, और उसका तो मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकृति में जो सुंदरता है उसे आप हम सब समझते हैं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि सौंदर्य के लिए हमें भी प्रकृति से सीख लेने की जरूरत है। प्रकृति किसी के भी सौंदर्य का अनुसरण नहीं करती। हमें भी किसी और की तरह दिखना है, किसी और की तरह बनना है, इस हट को छोड़ देना होगा। झरने, कल कल करती हुई नदियां एक अलग स्वभाव, एक अलग सुंदरता रखती हैं। पहाड़ों पर हरियाली की छटा, गगनचुंबी पर्वतों पर चांदी सी बर्फ बिल्कुल अलग आनंद देती है, और सभी अपने अपने सौंदर्य से सबको आकर्षित भी करते हैं। शायद प्रकृति अपने सौंदर्य से मानव को सत्यम शिवम सुंदरम का ही संदेश देती है। इसलिए सौंदर्य बोध के लिए प्रकृति से संदेश लेना बहुत जरूरी है। आज सुबह सुबह बस इतना ही। इजाजत दीजिए साहिबा को इस कार्यक्रम से। अब आप सुनेंगे कृषि चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम कृषि संकेत। ये अंक आधारित है जैविक कीट नियंत्रण पर, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी।
1: सामान्य तौर पे किसान भाई जब भी उनके खेतों में किसी प्रकार के रोग होते हैं या कीड़े होते हैं, उनके लिए रासायनिक जो कीटनाशी है या फफूंदनाशी है, इनका उपयोग करते हैं। जब हम लगातार इनका उपयोग करते रहते हैं, एक ही प्रकार के कीटनाशी का या एक ही प्रकार के फफूंदनाशी का बार बार उपयोग करते हैं, तो इससे कीड़ों में या जो भी बीमारियां हैं उनमें एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जो बीमारियों के रोगाणु हैं उनमें और जो कीट व्याधियां हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास होती है। जैसे हम देखें कि पहले हमारे यहाँ चने में फूली जनित रोग, उकटा जो

0: ऑक्टा था जो फ्यूजेरियम से होता, फ्यूजेरियम के बजाय जो दूसरा ऑक्टा लगने लगा है वो राइजोक्टोनिया से लगने लगा। इसी प्रकार से पहले जो कई प्रकार के कीड़े जैसे सफेद मक्खी है या अन्य जो कीड़े हैं जैसे आपका मिलीबग है, मिलीबग का प्रकोप पहले आम में या बहुत कम होता था, अब कई प्रकार के पौधों में सफेद सफेद रंग का रस चूसा कीट लगता है। तो ये बार बार जब हम एक ही प्रकार के कीटनाशियों का उपयोग करते हैं तो उससे कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और फिर वो उन कीटनाशियों से नष्ट नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में हमें जो जैविक नियंत्रण के उपाय हैं या जो कृषिगत नियंत्रण के उपाय हैं अगर वो हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें कम लागत में कम परिश्रम में ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ होता है और दूसरा जो भी हमारा उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो रसायनों से मुक्त होता है। तो इसलिए जो है जैविक नियंत्रण की जो विधियां हैं किसान भाइयों को पूरे वर्ष की प्लानिंग करके शुरुआत से ही इनका उपयोग करना चाहिए, जिससे हो सकता कि कीड़ों की या जो बीमारी की जो अवस्था है वो क्रांतिक अवस्था जो नुकसान की अवस्था है उससे नीचे रहेगी, तो हो सकता उनको रसायनों के उपयोग का मौका ही ना आए कि रसायनों का उपयोग करना। जैविक नियंत्रण से तात्पर्य है कि प्रकृति में मौजूद जो भी वनस्पति हैं या जो भी जीव हैं उनके द्वारा जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उनसे हम कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण करें। जैसे रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत सारे फफूंद या जीवाणु जनित उत्पादों को बनाया गया है जो नियंत्रण में कीट नियंत्रण में बहुत ज्यादा कारगर है। इसी प्रकार से कीट नियंत्रण में भी कुछ पौधों से प्राप्त उत्पाद हैं, कुछ जीवाणु प्रकृति के हैं, कुछ फफूंदी प्रकृति के हैं और कुछ पूरे के पूरे पौधे के भाग ही हैं जिनका छिड़काव करके जिनका उपयोग करके हम कीड़े और बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कि रसायनों के बिना उपयोग के हम कीट व्याधियों को नियंत्रित करते हैं वो जैविक कीट व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत। ज्यादातर जो पौधों की बीमारियां हैं वो या तो मृदा जनित होती है, मिट्टी में फफूंद रहते हैं और या बीज के माध्यम से रोगाणु पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो जो बीज जनित बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से होती हैं या जो मिट्टी के माध्यम से होने वाली बीमारियां हैं खासतौर से फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, पीथियम, स्क्लेरोशियम, ये बहुत सारे जो फफूंद है वो जमीन में रहते हैं या बहुत सारे जीवाणु जो है वो जमीन में रहते हैं और जब हम फसल को बोते हैं तो उस पे वो उन रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे गेहूं का कंडवा, ये कंडवा बीमारी बालियों में दिखाई देती है लेकिन ये मूल रूप से बीज और जमीन के माध्यम से पौधों में पहुंचती है। उकटा के जो रोगाणु है वो जमीन में रहते हैं, जब पौधे की बोनी पौधा जमता है तब जाके ये फूल आने की अवस्था पे बीमारी आती है। अदरक में लगने वाली बीमारी है राइजोम रॉट है, या अरबी में लगने वाला फाइटोप्थोरा है, या अरहर में या तिल में लगने वाला फाइटोप्थोरा बीमारी, ये सब बीमारियां जमीन के माध्यम से होती। तो जमीन में रहने वाले जो फफूंद है उनके लिए जो जैविक फफूंदनाशी है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या स्यूडोमोनास या ग्लोमस स्पीसीज, इनके जो दवा जैविक फफूंदनाशी मिलती है इनका हम बीज उपचार के रूप में 5 ग्राम से 10 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बीज का उपचार करें। सब्जियों में अगर समस्या आती है तो सब्जियों की जिनकी नर्सरी तैयार की जाती है, जिनके पौध तैयार की जाती है, पौधशाला में ही हम 10-12 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला के जितनी भी अपनी पौधशाला है उसमें ज्यादा मात्रा में हम उत्काल के पौधशाला ट्राइकोडर्मा को या स्यूडोमोनास को डाल सकते हैं। जो बड़े खेत है जैसे चने का खेत है, अदरक का खेत है, अरहर की फसल है, दलहनी फसल है जहाँ पे खासतौर से लेते हैं वहां पे उकटा की जो समस्या है या आलू में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए है तो 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 किलोग्राम स्यूडोमोनास को हम 1 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद में मिला के गीला करके उसको 10-12 दिनों के लिए रख दें और इसके बाद जब खेत में नमी हो तो शाम के समय उसको खेत में बिखेर के और बखन्नी करके उसको जमीन में मिला दें। तो ये ट्राइकोडर्मा जमीन में बहुत तीव्र गति से फैलता है और तीव्र गति से फैलने की वजह से दूसरे फफूंद उस खेत में पनप नहीं पाते तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता।
1: जैविक कीट नियंत्रण इस विषय पर केंद्रित कृषि संकेत का ये अंक आपने सुना। विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी थे। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे हमारे भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं के नदी सफाई अभियान की सराहना की। एसआईआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का राहुल गांधी पर पलटवार। समान नागरिक संहिता पर बोले मुख्यमंत्री, प्रदेश में बहुविवाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। और 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित, आईबीए और बैंक यूनियनों में बनी सहमति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात की 138वीं कड़ी में प्रदेश के युवाओं के नदी सफाई अभियान की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति से शुरू हुआ छोटा प्रयास धीरे धीरे बड़ा अभियान बन सकता है और इससे ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। उन्होंने इसे जन भागीदारी की अच्छी मिसाल बताया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आने वाली है। इस मौके को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता पर बापू के संदेश को दोहराया और लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। कल भोपाल में भाजपा कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से अपनी पार्टी और गठबंधन तक नहीं संभल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती दूरी का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपना कुनबा संभालना चाहिए। उन्होंने एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगाकर लोगों के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा कर रही है। भोपाल के रविन्द्र भवन में कल विश्व हिंदू परिषद की ओर से अशोक सिंघल जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को समय की मांग बताते हुए कहा कि प्रदेश में बहुविवाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक देश और प्रदेश में दो तरह के कानून नहीं चल सकते।
1: एक विधान तो मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू हो गया। ये हमारे सौभाग्य की बात। तो हम जब वहां बात कर रहे थे, जब यूसीसी पारित करने वाला विषय चला, इस विषय के लिए लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा SMS डाल करके इस विषय को फैलाने का काम किया। 10 लाख से ज्यादा सुझावों का संकलन हमने समाज के बीच में जाके किया। 40% से अगर मुस्लिमों ने समर्थन किया।
0: सीहोर जिले में कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 36 सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन किया। इन सड़कों से 41 बसाहटों के गांव मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे और 19,000 से ज्यादा लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। श्री चौहान ने अधिकारियों को सभी सड़कों का निर्माण 1 साल में पूरा करने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इछावर में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की भी घोषणा की, जिसके लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस साल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 8 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर कल रात IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। सीहोर जिले के बुधनी में दूधे की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौना बनाए जा रहे हैं। ये खिलौने पर्यावरण के लिए अनुकूल माने जाते हैं क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर जिले के संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
3: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वोकल से लोकल का सबसे सटीक उदाहरण है सीहोर जिले के बुधनी में दूधी की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौना उद्योग। बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल, ई

0: इको फ्रेंडली माने जाते हैं क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के जिला महाप्रबंधक श्री अरदास वर्मा ने बताया कि
1: बुधनी के जो परंपरागत शिल्पी हैं उनके द्वारा दुधी लकड़ी से खिलौना का निर्माण किया जाता है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फेमस है। उनके लिए शासन ने एक खिलौने क्लस्टर का बुधनी में निर्माण किया क्योंकि हमारे जो परंपरागत शिल्पी हैं एक ही जगह सभी लोग आए जिससे कि इनको बड़ा मार्केट मिलेगा।
0: ये उद्योग लगभग 100 से 200 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ की विश्वकर्मा समुदाय की कई पीढ़ियाँ इस कला को आगे बढ़ा रही है।
2: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है।
3: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं।
0: आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान।
4: उज्जैन में सीहोर 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल पूजा अर्चना के बाद अबदालपुरा स्थित अपने पैतृक मकान पर खुद गेटी चलाकर इसे तोड़ने की शुरुआत की। अबदालपुरा में करीब 272 मकान सड़क चौड़ीकरण की जद में हैं, जिनमें हिंदू मुस्लिम और बोहरा समुदाय के लोग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री की बहन और नगर निगम सभापति का मकान भी इसकी जद में आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीहोर में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए शहर के विकास में स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर यादव ने पीएम ई बस सेवा और उज्जैन दर्शन सेवा की भी शुरुआत की। आज विश्व रेबीज दिवस के मौके पर लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। रेबीज के लक्षण सामने आने के बाद बीमारी लगभग हमेशा घातक होती है लेकिन समय पर इलाज शुरू किया जाए तो मौत को रोका जा सकता है। संक्रमित कुत्ते के काटने या खरोंच पर घाव को तुरंत साबुन या बहते पानी से करीब 15 मिनट तक धोना चाहिए। बिना देरी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। घाव पर मिर्च तेल राख या कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में कटनी में भी आज आमजन को रेबीज जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शाजापुर जिले के शाजापुर में कल सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों और माताओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा की जानकारी ली। और अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर थमने लगा है और अगले 4 दिनों में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से उज्जैन इंदौर ग्वालियर चंबल संभाग में तेज धूप खिलने लगेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। आपको समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हितग्राहियों से संवाद कर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। नर्मदापुरम में सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। हाल ही में आंगनवाड़ी केंद्र बांसखेड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैतूल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सोयाबीन फसल में पीला मोजैक रोग से फसल प्रभावित होने पर फसल की वास्तविक स्थिति का प्राथमिक आकलन किया जाएगा। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के तहत कन्या शिक्षा परिसर रोटला में करियर काउंसलिंग और मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम बिन पर हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। ये वक्त मन चाहे गीत कार्यक्रम का है और कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं साहिबा। श्रोताओं, पहला गीत लता जी की आवाज में साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी।

गर्ल थीफ फिल्म से है ये गाना। मजू सुल्तानपुरी के बोल हैं और एस जी बर्मन का संगीत है। अनुरोध करता है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किस्सु, तासु, अर्णव, सत्यम, बोरा, गाछी। पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म गीत से। लता मंगेशकर का साथ दिया है महेंद्र कपूर ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, आपका अनुरोध है। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बोराना, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा, नेपाल पेले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, आप सबकी पसंद का आइए सुने। देखिए
1: जिस

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: किसे?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
2: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: इतने कहाँ से?
2: एक लाइन भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
1: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे, RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अगले गीत में लता मंगेशकर का साथ दिया है किशोर कुमार ने। ये गीत है फिल्म प्रेम कहानी से। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। हमारे इन श्रोताओं का अनुरोध है इस गीत के लिए, रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनू खर्चे, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरसान, अबान और उनके परिवार के तमाम लोग। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा।

और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसमें लता मंगेशकर का साथ मन्ना डे दे रहे हैं। श्री 420 फिल्म से ये गाना है, शैलेंद्र के ये बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित, पीयूष कुमार, हैप्पी आनंद, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया, साई राज और विशाल सपकाल, ग्राम नागरकोरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामन देवी साहू, पूजा, दुष्यंत और बेबी आराध्या साहू।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के,
1: और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: अगले गीत में लता मंगेशकर का साथ मुकेश ने दिया है, आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। ये गीत है फिल्म मेरे हम सफर से, जिसको सुनना चाहा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, पंडिता टुकटुक, और नागपुर से ये हैं वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी धवनी गवाड़कर। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता है कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हेमलता, डिंपल, कुमारी भाव्या देवांगन। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

श्रोताओं, आज भारत कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है और हमारे श्रोताओं ने कुछ ऐसे गीतों का अनुरोध हम तक पहुंचाया जिसमें लता जी के साथ दूसरे गायकों की आवाजें थी। इस गीत के साथ ही इस कार्यक्रम से आप साहिबा को दीजिए।

अभी श्रोता मनचाहे गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है, समय हुआ है संगीत सरिता का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं चंदन दास की आवाज में इस पेशकश के साथ, वो हमेशा का आलम है, क्या किया जाए।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: मेरी बेजुबा आँखों से गिरे हैं चंद कतरे, वो समझ सकें तो आंसू, ना समझ सकें तो पानी। आइए सुने ये गजल। ये हैं जगजीत सिंह, चित्रा सिंह।

राज्यव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को

0: विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वहीं इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
6: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
7: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज

0: सर्टिफिकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार, LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। समय हुआ है लोक संगीत का। आइए सबसे पहले सुनते हैं देशराज पटेरिया के स्वर में ये भजन।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: और आइए अब सुनते हैं ये चेतावनी की स्वर है असुद्दीन।

अभी श्रोता लोक संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है, 8:30 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम बिंदिया का। आइए शुरुआत करें इस कार्यक्रम की।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी ऋतु गौतम। और सखियों, शुरुआत करते हैं कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को समेटते हुए आइए दिल की बातों से करें कार्यक्रम बिंदिया की शुरुआत। और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सखियों, घर आंगन की बात हर बार हम आपसे करते हैं और घर आंगन में आपकी बात, हमारी बात, हमारे परिवार की बात, सभी की बात आ जाती है, क्योंकि घर के आंगन में ये सभी एक साथ हमारे साथ रहते हैं। और जब हम घर आंगन की बात करते हैं तो बात कई सारे पहलुओं तक पहुंच जाती है। हाँ सखियों, जी हाँ, सितंबर का महीना हमें कई महत्वपूर्ण अवसरों से रूबरू कराता है और इन्हीं में से एक है विश्व हृदय दिवस का दिन। जी हाँ सखियों, हमारा हृदय हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। यह लगातार हमारे लिए काम करता रहता है। हम सो रहे हों, आराम कर रहे हों या अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हों, हमारा दिल अपना काम निरंतर करता रहता है। इसलिए दिल की सेहत का ध्यान रखना हमारे दिनचर्या का जरूरी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कल यानी कि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसलिए आज विश्व हृदय दिवस की चर्चा तो बनती ही है। सखियों, अक्सर हम महिलाएं घर परिवार और कामकाज की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं। परिवार की सेहत, हर सदस्य का ख्याल, उनकी देखभाल, खान पान का समय, दवाई नियमित, इन सब काम

काज में हम अपना ध्यान रखना तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है ना? जी हाँ, लेकिन हमें ये बात बखूबी पता है कि आप सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन अपना ध्यान रखती हैं कि नहीं, इस बात का ध्यान आप ही को रखना है। आराम और स्वास्थ्य जांच के लिए समय निकालना बहुत ही जरूरी है, या यूं कहें हमें इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना है। तो सखियों, आज इसी बात पर जरा ठहर कर सोचिए कि सबका ख्याल रखने के साथ ही हमें अपने दिल का ख्याल रखना भी जरूरी है। सखियों, दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले बात आती है संतुलित खान पान की। भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी बहुत जरूरी है। बहुत अधिक मात्रा में नमक, चीनी और अत्यधिक तले भुने भोजन को सीमित रखना है जरूरी। और सखियों, इसके साथ ही हमारी शारीरिक सक्रियता भी महत्वपूर्ण है। कोशिश करें सखियों कि कुछ चहलकदमी, हल्के व्यायाम और अपनी क्षमता के अनुसार किसी शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन नियमितता बहुत ही जरूरी है। और सखियों, अब बात करते हैं कि तनाव, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आम बात हो गई है, घर, नौकरी, बच्चे, कई सारी दोहरी जिम्मेदारियों के बीच मन को आराम देना भी जरूरी है। तो सखियों, कुछ समय अपने लिए निकालिए, संगीत सुनिए, किताब पढ़िए, अपने दोस्तों से बातें करिए, परिवार के साथ कुछ आनंद के पल, पर्याप्त नींद जिससे मन को सुकून मिले, ताकि आप खुश महसूस करें। और हाँ सखियों, अपने शरीर द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। कभी भी आपको बहुत दिनों तक कोई अचानक कमजोरी, आंखों में दर्द, सांस फूलना या कुछ असहज महसूस हो तो तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लें। सखियों, एक और जरूरी बात कि नियमित स्वास्थ्य जांच, जैसे कि रक्तचाप, रक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल जैसी जांचों को डॉक्टरी सलाह के अनुसार स्वयं और परिवार की करवाते रहना चाहिए। सखियों, स्वस्थ हृदय का मतलब केवल बीमारी से बचना ही नहीं, बल्कि ऐसी जीवन शैली अपनाना भी है जिसमें हम खुद को समय दें, अच्छा खान पान, सक्रिय रहें और हमारा मन प्रसन्न बना रहे। तो इस विश्व हृदय दिवस पर एक छोटा सा वादा स्वयं से करें, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे लेकिन अपने स्वास्थ्य में भी उतना ही ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य को उतनी ही अहमियत देंगे, क्योंकि दिल स्वस्थ तो जीवन खुशहाल। सेहत का रखें सदा ख्याल, और अब दिल का ख्याल रखते हुए दिल से दिल की बात की जाए।

सखियों आप हैं कार्यक्रम बिंदिया में और अब हम बात करते हैं ज्योतिपुंज क्रम की। सखियों, ज्योतिपुंज क्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत की स्वतंत्रता संग्राम की वीर महिला मातंगिनी हाजरा जी को। मातंगिनी हाजरा जी का जन्म 19वीं शताब्दी में बंगाल के एक साधारण परिवार में हुआ था। वे आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी और देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई। मातंगिनी हाजरा जी को लोग गांधी बूरी भी कहते थे। वे महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित थीं। आपने सत्याग्रह असहयोग आंदोलनों में भी भाग लिया। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज बुलंद की। 29 सितंबर 1942 को वे तिरंगा लेकर एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। उस समय अपने देश और तिरंगे के प्रति अपना समर्पण बनाए रखा और इसी संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान दिया। मातंगिनी हाजरा जी का जीवन देश को समर्पित रहा। दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और देश के प्रति समर्पण इंसान को महान बनाते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हमें उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए, याद करते हुए नमन करते हैं। उन्हें शत शत नमन है। और सखियों, अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात आती है हमारी और आपकी। जी हाँ सखियों, हमारी और आपकी जब हम बात करते हैं तो बात कई विषयों से निकलती है और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो सीधे हमारे घर, हमारी रसोई और हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा है। जी हाँ सखियों, खाने की बर्बादी। हाँ, दरअसल 29 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपव्यय जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य लोगों को

यह समझाना है कि भोजन को बेवजह बर्बाद होने से बचाना कितना जरूरी है। जरा सोचिए बहनों, हमारे घर में कई बार जरूरत से ज्यादा खाना बन जाता है, कभी थाली में खाना बच भी जाता है, तो कभी फ्रिज में रखा भोजन समय पर उपयोग नहीं हो पाता और कभी कभी बाहर से खाना ऑर्डर करने पर ज्यादा आ जाता है। ऐसा आपके साथ भी जरूर होता होगा, कभी ना कभी तो होता ही होगा। ये छोटी छोटी बातें मिलकर भोजन की काफी बर्बादी कर सकती हैं। सखियों, भोजन केवल हमारे लिए खाना ही नहीं है, इसे तैयार करने में किसान की मेहनत, पानी, मिट्टी, ऊर्जा, समय और पैसा क्या नहीं लगता। खेत से हमारी रसोई तक पहुंचने में भोजन कई चरणों से गुजरता है, इसलिए भोजन का सम्मान करें, जितनी जरूरत हो उतना ही लें, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। सखियों, सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। भोजन उतना ही पकाएं जितनी आवश्यकता हो, थाली में उतना ही परोसें जितना खा सकें। बचा हुआ सुरक्षित भोजन तरीके से रखकर उपयोग किया जा सकता है। सब्जियां, फल, राशन खरीदते समय जरूरत और मात्रा का ध्यान रखें। और हम जानते हैं कि ये सभी बातें जो हम अपनी बहनों से कर रहे हैं वो बखूबी जानती हैं और इन बातों को समझती भी हैं। फिर भी इन बातों को याद रखना, बताना है बहुत ही जरूरी। सखियों, बची हुई चीजों का थोड़ी रचनात्मकता से नए व्यंजन में बदल कर उपयोग कर सकते हैं। बची हुई दाल के चीले, सब्जियों के पराठे, पुलाव, फ्राई और बहुत ही निपुणता से हमारी बहनें ये बना लेती हैं। इससे भोजन का सदुपयोग भी होगा और स्वाद और सेहत भी बरकरार बनी रहेगी। सखियों, बच्चों को भी छोटी उम्र में यह सिखाना जरूरी है कि भोजन बचाना, पानी बचाना, यह हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। तो सखियों, जितनी जरूरत हो उतना ही परोसें, भोजन बचाएं और सम्मान दें, और हम अपने बच्चों को भी इन छोटी छोटी बातों को सिखाएं और अपने घर से ही इसकी शुरुआत करें। ये तो ही सखियों हमारी और आपकी बात। और अब जी हाँ, जब बातों बातों में बातें आगे बढ़ती हैं तो बात होते होते यादों तक पहुंच जाती है और यादों में फिर हम यूं खो जाते हैं।

सखियों, यादों की बात हमने की और जब हम यादों में खो जाते हैं तो बातों में बहुत बहुत बहुत दूर तक चले जाते हैं और ऐसे ही हम भी आपसे बातें करते करते बहुत दूर तक चले जाते हैं। हाँ, लेकिन हमें याद रहता है कि हमारी सखियाँ अब इंतज़ार कर रही हैं कि आज आपकी सखी आपके लिए क्या लेकर आई हैं। तो सखियों, कुछ नया जो हमारी सखियाँ जानती हैं। सखियों, बात करेंगे कि बरकरार रहे मसालों का स्वाद। व्यंजन विधियां तो हम आपके लिए लेकर आते ही हैं, लेकिन आज बात करते हैं कि घर पर मसाला पीसकर सब्जी बनाने के बाद भी अगर आपके खाने का स्वाद कहीं खो रहा है तो संभव है कि आपका मसाला पीसते समय कोई थोड़ा सा उलटफेर हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिक्सी से पीसते वक्त हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपने ऊपर नीचे कर दी हो, जिससे मसालों की रंगत और सुगंध खत्म हो गई हो। तो आइए जानते हैं क्या हो सही तरीका। हम जानते हैं कि हमारी कुछ सखियां बहुत ही स्वादिष्ट मसाले बनाती हैं, लेकिन हम भी कुछ कुछ जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए या कॉपी पेन लेकर आप इसे नोट भी कर सकती हैं। सखियों, मसालों को पूरी तरह ठंडा करें। सखियों, बात आती है कि पीसने से पहले साबुत मसालों को धीमी आंच पर सुखाकर हल्का सा भून लें। इससे नमी खत्म हो जाती है और उनका स्वाद उभर कर आता है। पर मसालों को तुरंत मिक्सी में ना डालें, क्योंकि इससे जार में भाप बनती है जिससे मसाले चिपचिपे हो जाते हैं और उनकी प्राकृतिक खुशबू उड़ जाती है। तो पहले उन्हें कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें और फिर पीसें, यानी कि मसालों को ठंडा करके फिर पीसना है। अब पल्ट मोड का प्रयोग करें। मिक्सी को लगातार तेज गति पर चलाने से उसकी ब्लेड और जार अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। इस गर्मी के कारण मसालों में नमी आ जाती है और उनका स्वाद

फीका पड़ जाता है, इसलिए पल्ड मोड का इस्तेमाल करें या मिक्सी को 5 से 10 सेकंड चलाकर रोकें। इससे तापमान नियंत्रित रहता है और मसालों की सुगंध बरकरार बनी रहती है। अब बहनों यह भी ध्यान रखना है कि जार की क्षमता और सही आकार यानी कि मसालों की मात्रा के अनुसार ही छोटे ड्राई ग्राइंडिंग जार का उपयोग करें। जार को कभी भी ऊपर तक ना भरें, कम से कम एक तिहाई हिस्सा खाली रखें। इससे मसालों को घूमने और एक समान पीसने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। जार ज्यादा भरा होने पर मिक्सी की मोटर पर दबाव पड़ता है और मसाले ठीक से नहीं पिसते, तो जार की क्षमता के अनुसार सही आकार लें। सख्त मसालों को पहले से कूट लें। हल्दी की गांठ, दालचीनी या सूखी लाल मिर्च, ये थोड़ी से कड़क रहते हैं। ऐसे मसालों को सीधे मिक्सी में न डालें, पहले हल्का सा इन्हें तोड़ लें या हो सके तो इन मसालों को थोड़ा अलग करके मिक्सी में थोड़ा थोड़ा चलाएं और फिर इकट्ठा करके इसे एक साथ पीसें। इससे क्या है, ब्लेड खराब हो सकती है और पिसाई आसानी से भी नहीं होती है। इन्हें मिक्सी में डालने से पहले थोड़ा सा कूट लें ओखली पर उल्टा करके, जिससे मसाले जल्दी से पिस जाएंगे और मिक्सी की मोटर भी ठीक बनी रहेगी, उस पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपके मसालों का स्वाद बरकरार बना रहेगा। जी सखियों, तो अपने मसालों को अब जब भी आप पीसें तो हमारी बताई हुई इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिएगा। और सखियों, हम जानते हैं कि इंतजार है आपको कि आज हमारी सखी कौन सी व्यंजन विधि लेकर आई है, तो जानते हैं जल्दी से आज पनीर रैप। या सखियों, आप कई प्रकार का पनीर अलग अलग तरह से बनाती हैं, तो आज हम जानेंगे पनीर रैप। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कद्दूकस किया हुआ पनीर 150 ग्राम, प्याज एक बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च एक बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन एक बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ, तेल आधा छोटा चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 छोटे चम्मच, गरम मसाला 2 छोटे चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक और राइस पेपर सीड्स। अब इसे बनाएं कैसे, तो आइए पैन में तेल गर्म करके बारीक कटा प्याज और शिमला मिर्च डालें, फिर इसे मध्यम आंच पर 2 मिनट तक भूनते रहें। अदरक लहसुन कद्दूकस किया हुआ पनीर, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह से इसे मिलाएं और 2 मिनट पकाकर गैस बंद करें और मिश्रण को ठंडा होने दें। सखियों, हमारी बताई हुई बातों को ध्यान से गौर से सुन लीजिए। राइस पेपर शीट को पानी में 10 सेकंड भिगोएं, फिर प्लेट पर फैलाकर बीच में पनीर का भरावन रखें और इसके किनारों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए बंद करें। पैन में हल्का सा तेल लगाकर इन पनीर रैप्स को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक शैलो फ्राई करें और तैयार रैप्स को सेजवान चटनी या चिली सॉस के साथ गर्मा गर्म परोसें और स्वाद का आनंद लें। जी हां सखियों, पनीर रैप कुछ हटके जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और अब बात करते हैं बन डोसा। डोसा तो आप बहनें बहुत ही बखूबी बनाती हैं, अलग अलग प्रकार से बनाती हैं, फ्राई करके मसाला डाल के प्लेन डोसा, जैसा हमारे घर में हमारे बच्चों को पसंद आता है उस तरीके से। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं बन डोसा। इसके लिए क्या चाहिए सखियों, सूजी या रवा जो भी आपको पसंद हो 1 कप, दही 1/2 कप, शिमला मिर्च 1 छोटी बारीक कटी हुई, प्याज 1 छोटा बारीक कटा हुआ, गाजर 1 छोटे आकार की और कद्दूकस की हुई और हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, कद्दूकस की हुई, अदरक और 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता 4 से 5, तिल और राई 1/2 छोटा चम्मच तड़के के लिए और नमक स्वाद के अनुसार और पानी आवश्यकता अनुसार और इनो 1 छोटा चम्मच और घी और तेल सेकने के लिए। अब इसे बनाने की विधि हम आपको बता देते हैं। बड़े बर्तन में सूजी, दही, सभी कटी हुई सब्जियां, नमक और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें। ध्यान रहे बहनों, 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें और तय समय बाद मिश्रण में इनो डालें और

थोड़ा सा पानी छिड़क कर अच्छी तरह से मिला लें। तड़का पैन में थोड़ा घी गर्म करें और राई, कड़ी पत्ता, तिल तड़काएं और तैयार घोल को इसमें डालें। इसे धीमी आंच पर ढककर नीचे से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकने दें। ध्यान रखें, धीमी आंच में पकाना है। बीच में एक बार इसे देख लें कि हल्का सुनहरा हो रहा है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए और थोड़ा सा कुरकुरापन भी इनमें बना रहे। और इसके बाद इसे सावधानी से पलटें और दूसरी तरफ से भी घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लें। अब बहुत अच्छे से सिक जाने पर इसका जो कलर है वो हल्का सा बदल जाएगा, कुरकुरापन अलग नजर आएगा। अब गर्मा गर्म बन डोसा तैयार है। इसे नारियल चटनी या मूंगफली की चटनी के साथ परोसें। स्वाद, सेहत दोनों ही बनी रहेगी और आप तारीफ भी पाएंगी। तो सखियों, ये बनाया हमने बन डोसा, तो आप भी पनीर रैप, बन डोसा बच्चों की मनपसंद बनाकर उन्हें खिलाएं और तारीफ पाएं। और सखियों, अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई इशारा कर रही है कि समय हो चला है अपनी सखियों से अनुमति लेने का। तो इन्हीं दुआओं के साथ कि आप हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, अपनी रेडियो सखी को कार्यक्रम बिंदिया से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बिंदिया, ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से सुनेंगे।

आज रणबीर कपूर का बर्थडे है। 2007 में सांवरिया से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले रणबीर ने वेक अप सिड, रॉकस्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी और संजू जैसी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी एक्टिंग से एक खास फैन फॉलोइंग बनाई। विविध भारती परिवार की तरफ से रणबीर कपूर को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। रणबीर कपूर की मदरदृष्टि आप सुन रहे हैं तमाशा फिल्म से। मोहित चौहान की आवाज में, इरशाद खामिल के बोल, ए आर रहमान का

शेखर अफजियानी और कैरलिस्टा मोंटियारो की आवाज में आप सुन रहे हैं अनजानी अनजानी फिल्म से ये गाना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अनीता दत्त के साथ इन्होंने गाना लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

हम आपको याद दिला दें, आज रात का आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर केंद्रित होगा रणबीर कपूर पर। कार्यक्रम का अगला गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में तू झूठी मैं मकार फिल्म से, अमिताभ भट्टाचार्य

है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की वे पकाए दूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1950 में बाबूलाल चतुर्वेदी को यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आया।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने भी फोन किया कि मेरे यहाँ हम डोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर मैंने जाके एक लाइन सुना करते, दो लाइन चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के, उसकी चूंढ

28 सितंबर 1929 को इस दिव्य स्वर का आगमन हुआ। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती मंगेशकर के जीवन में उनकी पुत्री के रूप में तब किसे पता था कि यह स्वर एक दिन अपने आभा से न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व को आलोकित करेगा।

संगीत प्रेमियों के हृदय मंदिर में गूंजता लता जी का ये सात्विक स्वर। लता जी की आयु मात्र 13 वर्ष ही थी जब उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर इस दुनिया से विदा हो गए और लता जी के संघर्ष में जीवन की शुरुआत हुई। भाई बहनों में वरिष्ठ होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी भी उन पर थी। संकट की इस घड़ी में मददगार साबित हुए नवयुग चित्रपट संस्था के मालिक मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी। किशोर वयीन लता मंगेशकर को गाने का पहला अवसर मिला तो

महाराष्ट्री होने के नाते मराठी फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से लता जी की संगीत यात्रा का शुभारंभ स्वाभाविक था। सुधीर फड़के, दत्ता डावजेकर, वसंत प्रभु, वसंत देसाई, यशवंत देव, हृदयनाथ मंगेशकर जैसे नामी गिरामी संगीतकारों की रचनाओं को अपने शुचिरभूत मधुर स्वर से श्रृंगारित किया है लता मंगेशकर ने। भक्ति गीत हो या भावगीत, लोकगीत हो या सिने संगीत, लता जी के गाए मराठी गीतों के विशाल साम्राज्य से कुछ गीतों की झलक

0: ईश्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने मराठी फिल्मों के लिए आनंद घन के नाम से संगीत निर्देशन भी किया।
1: ये फिल्में हैं मराठा तितुका मेळवावा, राम राम पाहुणा, तांबडी माती, मोहित्यांची मंजुळा और साधी।

हमारे देश की लगभग 36 प्रादेशिक भाषाओं में लता मंगेशकर ने गीत गाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं मराठी, बांग्ला, राजस्थानी, डोगरी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, असमिया, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, सिंधी और तमिल। बांग्ला संगीत जगत को लता मंगेशकर का विशेष योगदान रहा।

0: सलील चौधरी और हेमंत कुमार जैसे मूलधन्य संगीतकारों की इन रचनाओं को लता जी के स्वर में सुनकर बंगभूमि ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बंगाली संगीत प्रेमियों को परितृप्त होते देखा जाता है।
1: सात भाई

अपने संगीत जीवन के आरंभिक समय में लता जी कुंदनलाल सहगल और नूर जहां जैसे प्रस्थापित गायकों की शैली से प्रभावित थीं। कालांतर में उर्दू की तालीम हासिल करके लता जी ने अपनी भाषा को और अधिक समृद्ध किया।

0: शास्त्रीय संगीत के नित्य अभ्यास और साधना से ही ऐसे दैवीय स्वर किसी कंठ से निस्सृत होते हैं। लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचनाओं को सुनकर ही श्रवण भक्तों को नाद ब्रह्म की अनुभूति होती है।
1: संत तुलसीदास, संत मीराबाई, संत सूरदास, संत कबीरदास और गुरु नानक देव जी की रचनाएं शब्द लता जी के स्वर से जब निस्सृत होते हैं तो मन भक्ति भाव से भर उठता है।
2: जब हम

पुण्य गायक पंडित भीमसेन जोशी के साथ जब लता जी ने राम का गुणगान किया और नारायण आराधना की तो वातावरण भक्ति रसमय हो उठा।

0: यूं तो लता जी के संगीत संसार से कुछ मोती चुनना हमारे लिए अत्यंत कठिन है, परंतु फिर भी ऐसी रचनाओं को याद करते हैं जिनमें लता जी ने आंचलिक गायन शैली को पूर्णत्व प्रदान किया।
1: ये है राज

श्रोताओं, हमारे जीवन की सभी अवस्थाओं को प्रभावित करने वाला कंठ है लता जी का। इस मंजुल स्वर में हमने कभी लोरी सुनी, कभी बचपन का गीत,

0: कभी कैशोर्य की उमंगे तो कभी युवावस्था में प्रेम की अनुभूति।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। श्रोताओं 9:50 बस होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार।

0: श्रोता नमस्कार, मैं हूँ मनोज सक्सेना, लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। मित्रों, आप तो जानते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मनोरोगों पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ होते हैं भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी। मित्रों, आपको बता दूं कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत पिछले 15 सालों से लगातार इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और हम उनसे उनके अनुभवों को साझा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं।
0: सर, कि आपके पास इतने मरीज आते हैं और आपको ये मरीजों के साथ एक समस्या और दिखती होगी कि मरीज जो आ रहा है परेशानी से घिरा हुआ, उसके साथ जो उसका सहयोगी आ रहा है वह भी उसी मर्ज से पीड़ित होता जा रहा है, ये क्यों हो जाता है?
1: देखिए, जैसे फैमिली हिस्ट्री रहती है, घर में किसी को मानसिक रोग या कोई भी शारीरिक रोग है, बीपी है, शुगर है, कैंसर है, तो परिवार के दूसरे मेंबर्स में भी रिस्क ज्यादा होती है, वैसे ही मानसिक रोगों में। ठीक है, दूसरी बात है कि एक व्यक्ति यदि मानसिक रोगी है, भले वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, मैनिया हो, या साइकोसिस हो, या और भी ओसीडी वगैरह है, या नशे से जुड़ी बीमारी, तो दूसरे की चांस भी होती है। दो कारण हो सकते हैं, एक तो वो एनवायरमेंट मिल रहा है उसे जिसमें ये उसके बीमारी जागृत हो सकती है ना, क्योंकि एक बीमार है मतलब कुछ स्ट्रेस है, या फिर वहां पे फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि इमोशंस नहीं क्लियर हो पाते, थॉट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो कारण हो सकता है कि पैटर्न वो है ना। दूसरा है कि अब जो व्यक्ति एक बहुत परेशान है तो उसको मैनेज करने में दूसरे में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, होपलेसनेस आ सकती है, निराशा आ सकती है, यार ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मानसिक रोगी अगर बिगड़ जाता है तो बड़ी परेशानी होती परिवार को, इधर से उधर लेके दौड़ रहे हैं, उसको फायदा नहीं हो रहा, दवाई नहीं खा रहा है, मैनेज कर एक नहीं दो दो लोग उसको समझा रहे हैं, तो घर का भी स्ट्रक्चर खराब होता है, दो दो लोग का वर्क फंक्शन खराब होता है, जो बीमार है वो तो है ही एक आदमी, और तो इसी चक्कर मानसिक स्थिति भी डाउन होती है, फाइनेंशियल भी डाउन होती है, सोशल भी, कारज वगैरह है कुछ, कहीं आना जाना वो भी रुक जाता है, तो ये सारे फैक्टर मिलके जो घर का मेंबर है जो इसमें इन्वॉल्व है उसको भी मानसिक रोग बढ़ा सकता है। इसीलिए उनको भी यदि लगता है तो साथ में, क्योंकि उनको पता है अब एक को बीमारी हो गई तो अब दूसरे को तो पता है कि अब हमें जल्दी सतर्क होकर जल्द से जल्द इलाज लेना, बिगड़ने नहीं देना, एक बिगड़ गया है चलो ठीक है उसका इलाज हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन जिसको आई रही है बीमारी उसको तुरंत उसका सलाह ले लेना चाहिए।
0: बिल्कुल सच है सर, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि घर का जो मुखिया होता है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता है कि वो कितनी पीड़ा से गुजर रहा है, उसके ऊपर कितना मानसिक दबाव है, वह मानसिक दबाव कहीं ना कहीं मनोरोग में ना बदल जाए इस बात का ध्यान रखना होता है। अब सर, एक चीज और भी है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर है या ट्यूमर है या हार्ट पेशेंट हो गया है, तो वह मरीज भी मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, उसको कैसे बैलेंस किया जाए कि एक तो उसको वो बीमारी थी, ऊपर से ये भी हो गई, डिप्रेशन हो गया उसको, कहीं कुछ और एंजाइटी हो गई।
1: देखिए, जो गंभीर मानसिक गंभीर शारीरिक बीमारियां हैं, टर्मिनल इलनेस है, या फिर क्रोनिक जो बड़े ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट या ब्रेन की बीमारियां, उनके साथ मानसिक रोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, विभिन्न अध्ययनों में ये पता चलता है। उसके कई कारण है, एक तो कि व्यक्ति को पता है कि अपने पास इतना ही समय है, दूसरा है कि उसको जो बीमारी हुई है उसकी वजह से शारीरिक तकलीफें तो हो ही रही हैं, फाइनेंशियल भी हो रही है, कई काम वो कर नहीं पा रहा है, और फिर देखता है कि सभी लोग उसी में लगे हुए हैं, तो उसे गिल्ट फीलिंग भी आ जाती, तो ऐसे लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, भविष्य को लेकर बहुत चिंता।

0: मेरे बाद क्या हो गया, या फिर बहुत नुकसान हो रहा है, हर चीज जो भी नेगेटिव हो रहा है घर में मेरी वजह से हो रहा है, बच्चे परेशान हैं, सब लोग डिस्टर्ब हैं, तो वो एक गिल्ट फीलिंग या आत्मग्लानी आ जाती है और हताशा या फिर नाउम्मीदी आ जाती है कि यार अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं ऐसे लोगों को मानसिक रोग होने का भी, है ना। और इसके अलावा अब घर परिवार के लोग भी जिनको डिसीजन लेना है, जैसे आपने बोला कि जो मुखिया होते हैं बहुत प्रेशर में होते हैं, क्योंकि उनपे काम का तो है ही, फिर इस व्यक्ति को संभालने का, फिर डिसीजन, ऐसे बड़े डिसीजन की सर्जरी कराना है कि कीमो कराना है कि रेडियो कराना है कि बाईपास कराना है कि लीवर में कुछ सर्जरी कराना है या ट्रांसप्लांट की किडनी की व्यवस्था करनी है, तो बहुत प्रेशर होता है, ये छोटे डिसीजन नहीं होते हैं। तो ऐसे में आदमी जो परिवार का व्यक्ति है वो भी डिप्रेशन या एंजाइटी से ग्रसित हो सकता है।
1: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, न्यूरो मनोचिकित्सा क्लिनिक भोपाल, मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर, मिर्गी, सिरदर्द, नसों के दर्द, सभी तरह की मानसिक एवं व्यवहारिक समस्याओं, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं के निदान हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9406925768, हमीदिया हॉस्पिटल के सामने, 27 न्यू ताज मार्केट एवं 11 ऋषि कॉम्प्लेक्स, DIG बंगला चौराहा, भोपाल।
2: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत अब आपके आसपास के क्षेत्र बाड़ी, बरेली, उदयपुरा और बीना में भी उपलब्ध है।
0: हम इसके उपचार की तरफ चलते हैं सर जी। अब ऐसी परिस्थिति में मरीज का भी उपचार होना है और जो साथ में अटेंडर है, उसका जो देखभाल करने वाला है, उसको भी इस बीमारी से बचाना है जी। इसका तरीका क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाए, कैसे सुलझा जाए इससे?
3: कई बार एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मानसिक रोगी है, उसे कुछ दवाई दो तीन तरह की चल रही है, उनको कोई शारीरिक बीमारी हो गई, तो क्या करते हैं परिवार के जन या मरीज स्वयं, वो सारी दवाइयां अचानक बंद कर देते हैं।
0: ये भी सच है,
3: वो भी बीमारी को बढ़ा देता है। क्योंकि एक बात तय है कि ब्रेन जो है, माइंड जो है, वो बॉडी का ही हिस्सा है। यदि दूसरे ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है और आपके ब्रेन में भी प्रॉब्लम है और आप ब्रेन वाली दवाई बंद करेंगे, तो बाकी ऑर्गन की प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है।
0: बिल्कुल सच बात।
3: तो बिना डॉक्टर की सलाह से तो बंद करना नहीं। दूसरी बात बोले कि परिवार के लोग, कई बार तो क्या होता है, ये टेंशन हुई तो मरीज की दवाई भी कई बार डोज बढ़ाने पड़ते हैं, भले ही आप एडजस्ट करते हो, दूसरे टाइप की दे देते हो, ताकि उसको मानसिक रोग ना बढ़े। क्योंकि मानसिक रोग यदि बढ़ा तो इस रोग से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी आपको, क्योंकि आत्मशक्ति मानसिक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी रोग से लड़ने की। यदि वो कम होगी तो रोग बढ़ेगा। फिर परिवार के लोग भी, तो हम लोग उनकी भी काउंसलिंग करते हैं।
0: अच्छा,
3: कि ऐसे व्यक्ति को कैसे पॉजिटिव रखना है, थॉट प्रोसेस को ठीक करते हैं, ताकि उनके अंदर आत्मग्लानी या हताशा, निराशा या डिप्रेशन नहीं आए। और बाई चांस मान लीजिए हमारे पास लेट आते हैं मरीज, तो परिवार के लोग भी कोई यदि शुरुआती लक्षण है तो एक दो दवाई से हम उनको रिलैक्स करते हैं, ताकि वो अपने काम भी कर सके, मरीज की केयर भी कर सके और बाकी जिम्मेदारियां भी पूरी कर सके।
0: ये वाकई ये बहुत ऐसा मुद्दा था जिस पे लोग वाकई बहुत सारी बात करना चाहते हैं, बातचीत सुनना भी चाहते हैं। सर एक चीज और है कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर पूरा बोझ है, जिस व्यक्ति को पूरा घर संभालना है, पैसा कमाना है, उसके ऊपर मानसिक दबाव जब बनता है तो वह बिखर जाता है। उस मरीज को हिम्मत देने के लिए एक मनोचिकित्सक के रूप में आप क्या सलाह देंगे, उसको कैसा जीवन शैली होनी चाहिए उसकी?
3: देखिए, सबसे पहले तो आप जो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाएं कि भाई मैं, मेरी ये क्षमता है, मैं ये कर रहा हूँ, क्या कमी है, मैं कर सकता हूँ, उतना सोचें। पॉजिटिव सोचना कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, फला ये कर पाता या मैं ऐसा होता तो कर पाता नहीं। देखिए आपकी स्थिति के हिसाब से, फिर मरीज की परिस्थिति देखिए वो कितना सहन कर पाएगा। डॉक्टर्स दोनों तरह की सलाह देते हैं, है ना, वो हर परिस्थिति के हिसाब से आपको इलाज देते हैं। तो आपको चुन के मरीज की परिस्थिति, डॉक्टर की सलाह और अपने घर वालों से सामंजस्य बना के डिसीजन लेना। अकेले हर चीज करने की कोशिश ना करें, उसको डिस्कस करें और एक्सपर्ट की माने, है ना। हमेशा ये नहीं है कि एक्सपर्ट बोल रहा है कि मरीज की हालत ठीक नहीं, अपन सर्जरी नहीं कर पाएंगे और आप लगे हुए हैं सर्जरी कराना है, तो वो भी गलत है, उससे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है।
4: और अपनी क्षमताएं देख के
3: इलाज कराना।
4: आप पता चल रहा है कि आपकी क्षमताएं
3: अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को, कि समय के हिसाब से चलना चाहिए।
4: मित्रों आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल आते हैं तो आप हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9406925768। नंबर फिर सुन लीजिए 9406925768। इस नंबर पर आप हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं और अपना परामर्श भी ले सकते हैं। मित्रों आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम दे रहे हैं, मिलेंगे हम अगले सोमवार। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत का नमस्कार।

प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। आप इस वक्त जुड़े हुए हैं आकाशवाणी सागर के साथ। श्रोताओं, थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह के 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसका अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से किया जाएगा। समय हो चला है, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: सुनिए अनूप पूर्ण जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर दीपा सिंह। अनूपपुर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात गांव के विकास से जुड़ी पहल की। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बीबीजी रामजी मिशन के तहत जिला स्तरीय पंच सम्मेलन हुआ। इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर बात की। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि गांवों का विकास ही विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। अब बात बारिश के मौसम में राशन की। अनूपपुर में पात्र परिवारों को अगस्त और सितंबर दोनों महीनों का राशन एक साथ दिया गया। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए पहले ही दोनों महीनों की खाद्यान्न सामग्री राशन दुकानों तक पहुंचा दी थी। इससे पात्र परिवारों को लगातार दो महीने राशन लेने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी। इसी कड़ी में जिले में संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर समरसता संकल्प अभियान चलाया गया। 20 अगस्त से शुरू हुई कलश रथ यात्रा अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए 10 सितंबर को अमरकंटक में संपन्न हुई। इस दौरान सामूहिक आरती, गुरुवाणी पाठ, भजन संध्या और समरसता संकल्प जैसे कार्यक्रम हुए। अभियान के जरिए संत रविदास के समता, सेवा और सामाजिक न्याय के संदेश को लोगों तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मैहर के कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के जरिए अनूपपुर की 1,25,342 लाडली बहनों के खातों में करीब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी। हर बहन के खाते में योजना के 1,500 रुपए के साथ रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 250 रुपए भी दिए गए। उपभोग करते हैं जंगलों का, जहां साल के पेड़ों को बचाने की तैयारी चल रही है। अमरकंटक में साल बोरर कीट के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए विशेषज्ञों की कार्यशाला हुई। इसमें वैज्ञानिकों ने कीट की पहचान, निगरानी और उसके प्रकोप को नियंत्रित करने के तरीकों पर चर्चा की। जंगलों और पर्यावरण को बचाने के लिए अनूपपुर में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। कलेक्टर रत्नाकर झा ने सरकारी संस्थानों और सरकारी जमीन पर यूकेलिप्टस समेत विदेशी प्रजातियों के पौधे लगाने पर रोक लगा दी है। अब उनकी जगह स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पेड़ पौधे लगाने पर जोर रहेगा। पर्यावरण के साथ बात वन राष्ट्र निर्माण की। अनूपपुर के पूर्व श्री तुलसी महाविद्यालय में महर्षि अरविंद की जयंती पखवाड़े के तहत व्याख्यानमाला आयोजित हुई। विद्यार्थियों को महर्षि अरविंद के जीवन, कर्मयोग और आश्रम से जुड़े विचारों के बारे में बताया गया। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जिले में नया राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है।

0: है हमारी जिम्मेदारी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका, पोषण मेले और गर्म पके भोजन की गुणवत्ता की सामुदायिक निगरानी जैसी गतिविधियां हो रही है। और अब बात उन जलाशयों की जो जिले की जल सुरक्षा से जुड़े हैं। अनूपपुर के 15 चिन्हित जलाशयों की बांध सुरक्षा का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम जलाशयों की संरचनात्मक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और दूसरे तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। इस जांच में जोहिला, कंटूर, नानघाटी, बोहिता समेत जिले के 15 जलाशय शामिल हैं। जिले के लिए एक और सम्मान की खबर है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में तय लक्ष्य से ज्यादा राशि जुटाने पर कलेक्टर रत्नाकर झा को प्रशंसा पत्र लेकर सम्मानित किया गया। जिले में 3,63,000 रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,23,550 रूपये जुटाए। और अब सेवा और जनभागीदारी की। अनूपपुर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की श्रृंखला चलाई जा रही है। जिला अस्पताल समेत जयथारी, कोटमा, फुनगा, पशुराजगढ़, अमरकंटक और दूसरे स्थानों पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को मोजर बियर पावर प्लांट जयथारी में भी रक्तदान शिविर होगा। इसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। अभियान की शुरुआत अमरकंटक में मां नर्मदा के पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। जिले भर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 2 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आखिर में बात अनूपपुर के त्योहारों और भाईचारे की। ईद मिलादुन्नबी का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन और कजलिया जैसे पारंपरिक पर्वों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने हरतालिका तीज पर मेजला व्रत रखकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही 10 दिन तक चले गणेश उत्सव का भी जिले में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण समापन हुआ। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: ये आकाशवाणी सागर है। 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फोन करें, लोकगीत सुनें।

0: फरमाइशी लोकगीतों के फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम में सभी श्रोता भैया बिन्नाहरों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से फोन पे बातचीत कर रहे हैं हम राजेंद्र नारायण तिवारी
1: और भैया हम हैं जय शेखर। और भैया स्वीकार करो हम दोनों की
0: राम राम
1: और लेते हैं जो पहला फोन। हेलो
2: हेलो
1: राम राम भैया फोन करें लोकगीत सुनने में स्वागत है आपको।
2: धन्यवाद जी कहें जय शेखर विद्या को जयराम जी की पहुँच जाए।
1: जयराम जी भैया अपना नाम बताओ।
2: राम मिजोरा जिला सागर से मैं गोलू अहलवाल बोल रहा हूँ।
1: गोलू भैया हम आपको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हमें बताओ कि भैया बारिश के हालचाल क्या हो रहे हैं आपके तय।
2: बस सर बारिश तो अभी सर 2-3 दिन से सर जी जैसे मतलब 4-5 दिन बजा थे
1: हाँ,
2: और पानी गिर चालू हो जाता।
1: अच्छा अच्छा अच्छा बिजोरा में पानी की सप्लाई कहाँ से होती है भैया।
2: सर बीएससी सप्लाई तो प्राइवेट बोरियांगी सर जी अपने गांव में।
1: हाँ हाँ
2: हम लोग तो सर जी नल से पानी भराते हैं।
1: भैया आसपास कोई नदी नाले हो तो बताओ।
2: हमारे तो सर बीएससी नदी तो नहीं है मगर बीएससी तालाब वगैरह खुद ही बटारों पे तो भी तो अच्छे खासे भर चुके हैं पानी गिर रहे थे सर।
1: अच्छा अच्छा अब हम भैया हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
2: बताओ सर जी बने तो हम बते हैं।
1: अटका कह रहे हो लाल लाल झुमको मैंने हाथ बढ़ाओ तुम खो तुमने काट खाओ हम खो हमने खा लो तुम खो।
2: मतलब बर रही
1: है नहीं भैया अपन बर रही है वो हाथ का हो बड़ा है और खा है कैसे बर रही है आपको।
2: हम जाके थोड़ा सा हिंट तो दे हमें समझ नहीं आ रही।
1: हिंट भैया जा खावी पी वाली चीज है
2: वो समझी तो नहीं।
1: कोई बात नहीं भैया अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे।
2: नारायण सिंह रेगबा जी की आवाज में सुनवा दो आप लोकगीत।
1: चलो भैया गोलू भैया हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पे नारायण सिंह रेकवार को गाओ भाओ जो

0: तू बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: हेलो।
4: हाँ हेलो।
3: हाँ भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने।
4: जी सर।
3: अपन को आ बोल रहे भैया?
4: हम मोहन सिंह लोधी।
3: अच्छा।
4: ग्राम फिरिया महाधा, तहसील बंदा जिला सागर से।
3: अच्छा
4: जी।
3: तो मोहन सिंह भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में।
4: जी।
3: कछु भैया अपने बारे में बताओ, क्या करत हो?
4: भैया खेती किसानी करते हैं हम, तो जबरदस्ती फसल तो पूरी खराब हो गई है, सड़ गई है।
3: पानी खूब गिर गयो।
4: खूब अब रेम रेम गिरो 9-10 दिन ना, तो उसमें सबरी फसल सड़ गई और सोयाबीन की फलियां झड़ गई, कछु नहीं बचेगा।
3: तो भैया आप देखो, फसल नुकसानी तो हो गई, ओके लाने मुआवजा देवे के लाने सर्वे भी हो रहा है भैया।
4: अपने पे आ है को तो आप जब अपन करा दी।
3: हाँ, लेकिन भैया तब तक अपन को फसल नहीं काटने आए। अब भैया इन फसलों में जो कछु होगा सो होगा। अब भैया अगली फसलों की तैयारी करने अपन को।
4: अब तो साहब कर भी जो मेरे जहाज उड़ के अजय सही बता रहा है।
3: हाँ।
4: तो बखन ने भी खाद को इंतजाम कर भी और दूसरा फसल में भी होता।
3: बिल्कुल भैया। तो मोहन सिंह भैया बताओ, फरमाइश काले के आए हो?
4: हम सारे रामदयाल सिंह को गाय कछु दो तीन लोग भी थे।
3: रामदयाल सिंह?
4: हाँ, उनमें से आप कौन भी एक लोग भी सुनवा सकत।
3: चलो भैया, आपकी जा फरमाइश तो हम ले लिए। अब पूछ रहे हैं भैया आपसे अटका।
4: आओ पूछो सर, अगर बन है तो बराबर बताइए अपन।
3: तो सुनो ध्यान से भैया।
4: आओ।
3: कहीं लाल लाल झुमको।
4: हाँ।
3: मैंने हाथ बढ़ाओ तुमको।
4: हाँ।
3: तुमने काट खाओ हमको।
4: हाँ।
3: हमने खा लो तुमको।
4: जब मछा था तो ना।
3: हाँ हाँ भैया।
4: तो फिर निबर रहेंगे मंगे, निबर रहेंगे तो कहीं हो तो खा देंगे आते।
3: हाँ भाई, तो
4: कछु थोड़ा संकेत बताओ अगर।
3: अब भैया जो ही टाइम चल रहा है, थोड़े दिनों में आन लगेंगे।
4: अब मका सका तो साहब आए नहीं, मका तो काटा कूड़ी नहीं कर रहे।
3: चलो भैया, बहुत सारी चीजों को नाम ले दो आपने।
4: जी जी जी।
3: मनो अटका को सही उत्तर नहीं दे पाए। कोई बात नहीं भैया, आप कार्यक्रम सुनत रहो, कार्यक्रम के अंत में हमारे बते हैं। और अब आपकी फरमाइश पे आपके लाने सुनवा रहे हैं रामदयाल सिंह को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो,
1: हम महेश यादव बोल रहे हैं ग्राम करारी से।
0: महेश भैया, क्या हाल चाल है आपके?
1: ठीक है, पुलिस विभाग में सेवा करिए, प्रधान आरक्षक सूबेदार भी सर।
0: अच्छा अच्छा, तो भैया कौन कौन शहर में दई है अपनी सेवाएं?
1: अपन ने सागर, कोतवाली, नगर, गोपालगंज, बीना, 32 नगर कर।
0: तो बीना में इटावा थाने में लगी डेथ हुई आपकी ड्यूटी? हाँ भैया, चलो अच्छी बात है, देशभक्ति और जनसेवा।
1: हाँ सर, सम्मान दिया भी रहा।
0: भैया खावे पीवे की क्या व्यवस्था रहे थे आप लोगों की? बैरक में मिल जाते तो खाना के अपनो अलग से?
1: नहीं, अपन सर क्या है, घर के खाना खाते थे।
0: चलो, यानी हर जगह अपनी फैमिली को संगे लेके चले हो आप?
1: हाँ, VIP ड्यूटी लगी जैसे, तो उसमें सरकारी खाना मिलता था।
0: तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने देश की सेवा करी, जो बहुत ही बड़ा अच्छा काम है भैया। अनुशासन और कानून को बनाए रखवाबे में भी आपने अपना सहयोग दो, और हम सब आपकी बहुत सराहना करते हैं भैया। और भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
1: जी सर।
0: अटका कह रहा है कि लाल लाल झुमको, मैंने हाथ बढ़ाओ तुम खो, तुमने काट खाओ हम खो, और हमने खा लो तुम खो। खावे पीने की चीज है भैया, बाल बच्चे तो खूब ही खाते हैं।
1: कलिंगो तो
0: नहीं भैया, काटा तो नहीं है कलिंगो अपन खो।
1: अच्छा अच्छा, नहीं कर रहा सर।
0: कोई बात नहीं भैया, आप बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
1: चलो भैया,
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: नमस्ते भैया, आकाशवाणी सागर और फोन करें लोक गीत सुने कार्यक्रम।
1: हाँ सर।
0: अपन को बोल रहे भैया?
1: सुभाष नगर से राजकुमार साहू बोल रहे थे सर।
0: अच्छा अच्छा, तो लाल सिंह भैया बताओ कछु अपने बारे में, का करत हो?
1: सर हम तो गैस को काम करते हैं सप्लाई।
0: अच्छा।
1: हाँ सर।
0: तो हॉकर हो आप?
1: हाँ सर।
0: अच्छा अच्छा, तो भैया हमारे सुनबे वारों के लाने जा बताओ के गैस को उपयोग करत समय अपन को कौन कौन सी सावधानी रखो चाहिए?
1: सर गैस में तो बहुत सी सावधानी रखने चाहिए, अपनो खाना बनो चुटकी से बंद करो रेगुलेटर।
0: हाँ हाँ।
1: आड़ी टंकी डाल के कभी गैस नहीं जलाओ, अगर थोड़ी बहुत बची तो बची जाएगा।
0: अच्छा,
1: उसमें भी खतरा है सर।
0: अच्छा भैया जा बताओ कि अगर घरेलू गैस कनेक्शन वालों के लाने EKYC को काम भी चल रहा है, तो जो कैसे भैया करवाओ चाहिए ये बारे में भी कछु बताओ।
1: सर जैसा है जैसे हम लोग आकर गिरी कर रहे हैं।
0: हाँ।
1: आपके घर पर लेकर जाए, आपकी अगर KYC नहीं है तो आपको आधार कार्ड लेके आपकी फोटो खींच के हम KYC आपके घर पे डाल देंगे।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है यार। तो बताओ भैया आज फरमाइश का है आपकी?
1: सर हमें तो अच्छे बढ़िया गणेश जी को भजन।
0: कलाकार को नाम बताओ भैया?
1: मुन्नी लाल बरसैया, वो गणेश भजन।
0: चलो भैया आपकी फरमाइश तो हम पूरी कर दे हैं, और अब बारी आ गई आज के अटका की।
1: हाँ सर।
0: बताओ भैया।
1: बताओ आप।
0: तो सुनो ध्यान से, कई लाल लाल झुमको मैंने हाथ बढ़ाओ तुम खो, तुमने काट खाओ हम खो, और हमने खा लाओ तुम खो।
1: टमाटर तो नहीं?
0: टमाटर भैया अपन को काटत तो नहीं है, झुमकी के बरोबर होत भैया जो झुमका की बात हो रही है भैया इसमें।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो एको भैया आकार जो है झुमकी के बराबर होत है? नहीं बता पा रहे। चलो भैया कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनत रहो, कार्यक्रम के अंत में हमारे बते हैं, और अब आपकी फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं मुन्नी लाल बरसैया को गाओ भाओ जो लोकगीत।

0: हेलो
1: जयराम जी साहब।
0: जयराम जी भैया फोन करें, लोक गीत सुनो, मैं स्वागत कर रहा है आपको।
1: धर्मेंद्र बोला सर, ग्राम बड़ौदिया वल्लभ।
0: धर्मेंद्र भैया खूब स्वागत कर रहे हैं आपको बड़ौदिया वल्लभ बारे।
1: जी सर,
0: कछु बताओ अपने बारे में, क्या कर रहे हो धर्मेंद्र भैया?
1: सर अगर तो पानी मिल रहा है, खेती किसानी में मक्का और सोयाबीन भाव है।
0: अच्छा अच्छा ठीक है भैया। और जो पानी अब गिर रहा है, जो फायदेमंद है कि परेशान कर रहा है आपके लाने?
1: सर कछु सोयाबीन आ गए हैं जो नुकसान कर रहा है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: वो कछु का फायदा कर रहा है जो।
0: तो भैया सब प्रकार की बातें हैं पानी में,
1: और क्या है, फल भी कम है।
0: और भैया एक अलावा का भैया फुर्सत के समय में अपन का कर वो पसंद करा थे?
1: सर अपनी दुकान है, गणेश जी रखे हुए,
0: यानी घर गृहस्थी में लगे हो आप तो पूरी तरीके से।
1: और का
0: तो भैया कहीं घूमे फिर भी खो नहीं जा तीर्थों को?
1: जाते जा।
0: कहाँ कहाँ हुआ है?
1: चित्रकूट हुआ है, मैहर हुआ है, और अभी वो तो जाने हैं तो अयोध्या।
0: अरे वाह भैया वाह, खूब घूमो फिरो। और अटका क्या रहो भैया के लाल लाल झुमको, मैंने हाथ बढ़ाओ तुम खो, तुमने काट खाओ हम खो, हमने खा लाओ तुम खो। मछो को अपन भैया हाथ कहाँ बढ़ा थे और खा कैसे लेते? मछो को तो नहीं खाता अपन।
1: लाल तो नहीं है सर।
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया,
1: हाँ
0: हाँ हाँ हाँ हाँ भैया आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने ना तो हमसे हिंट पूछो और ना कुछ संकेत पूछो, और आपने सीधो अटका को जवाब दे दो।
1: हम 3 महीना सोचे थे, 3 महीना बाद लगा थे कि अटका तो पूछ जरूर।
0: अच्छी बात है भैया, अभी तक कोई भी सोता है जवाब नहीं दे पाओ, तो आप थोड़ा समझा और दो कि बेर कैसे होगा
1: जी। अब जो सीजन आ रहा दिवाली को,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: अब जी बेर फर है।
0: हाँ हाँ,
1: बेरी के भाई जी अपने दरे के भाई हमें हारे खराब है, तो अपन उनको तोड़ो।
0: हाँ,
1: तो पकड़ ले दरो, तो क्या तो गिरा ही जाते हैं, नहीं कहते सर जाली तो खा ले।
0: और मन ऐसा है भैया कि बच्चों को चाहे बड़ों को चाहे बूढ़ों को मानत नहीं है बिरियों में से।
1: जी बीर आए, मैं तो बटोर पे खा नहीं पड़ा।
0: तो अब बता दो भैया कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
1: राजू पटेल जी को चेतावनी लोकगीत।
0: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है, सुन लो अपनी फरमाइश पे राजू पटेल और उनके संगी साथियों को गाओ भाव जो चेतावनी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम है फोन करें लोग की सुने।
1: हम गोरिया से नन्नीलाल बटे रहली रूट से बोल रहे सर।
0: नन्नीलाल भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम फोन करें लोग की सुने में।
1: जी सर।
0: भैया कहाँ हो रहा हो अब?
1: सर अब गोभी नंद रही है सर।
0: अच्छा, खेती किसानी में गोभी को काम चल रहा भैया?
1: जी सर।
0: तो बताओ भैया गोभी की खेती के बारे में कैसे का करत हो?
1: गोभी में सर पहले पौध बनाते हैं।
0: हाँ।
1: एक महीने की पौध हो जाती फिर उसको लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: दवाई डालनी पड़ती है ना? यही मेहनत करती रहती है।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है। और गोभी के दाम भी भैया अगर अच्छी फसल पहले से आ जाए तो अच्छे दाम मिल जाता अपन को।
1: सर इस बार ये बहुत परेशान कर रही है।
0: अब इल्ली के लाने भैया देखो मौसम ऐसा रहो है, पानी ऐसा अच्छो रिमझिम गिरत रहो है, तो इल्ली सपरत रही अच्छी है ना। अच्छो तेज झला गिर जाते तो इल्ली को नाश हो जातो।
1: जी सर।
0: चलो भैया ठीक है, लेकिन अब मौसम के हिसाब से और जो विशेषज्ञ बताऊ थे जैविक दवाई जैविक कीट नियंत्रण उनको अपन उपयोग करके देखें, प्रयोग करें अपनी फसल पे
1: सर,
0: है ना। ज्यादा भैया रासायनिक दवाइयों में अपन को खर्चा नहीं बढ़ाने खेती को।
1: जी सर।
0: तो बताओ भैया फरमाइश का है आज?
1: फरमाइश सर गंजेमदास मृदुल गाया हुआ लोग सुनने हैं।
0: चलो भैया ठीक है, आपकी फरमाइश तो हम पूरी कर दे हैं और अब बारी आ गई आज के अटका की।
1: जी सर।
0: सुनो ध्यान से भैया। कई लाल लाल झुमको मैंने हाथ बढ़ाओ तुमको, तुमने काट खाओ हमको, तो हमने खा लो तुम खो।
1: बर रजा तो नहीं सर?
0: हाँ हाँ भैया बर रही खा ले थो का काटा था सु।
1: कछु हिंट दे।
0: अब यही में है हिंट, छोटी सी चीज है भैया झुमके बिरोवर।
1: झुमके बिरोवर।
0: हाँ अब एक टेम आवे बारो है।
1: मकुजा तो नहीं सर?
0: बस लेगा पहुँच गया भैया, मकुइया के पहले और कछु भी लगा जात भैया, जोड़ी रहते जोड़ी से होत भैया
1: जोड़ी।
0: हाँ जब मकुइया कहते हैं भैया तो ओके आगे एक और शब्द लगाते है। बताओ
1: मकुजिया के आगे कौन सा शब्द लगाते?
0: ध्यान करो।
1: छोटी वाली टमाटर तो नहीं है? एक बोल रही थी
0: टमाटर में कांटे रहते हैं क्या भैया?
1: रहते हैं भी जो।
0: हाँ हाँ भैया टमाटर नहीं, कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनत रहो, कार्यक्रम के अंत में हम उन्हें बते हैं। और अब आपकी फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं गोस्वामी घनश्याम दास मृदुल को गाओ भाव जो लोग।

0: हाँ सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुनने में स्वागत है आपको, अपना नाम बता दो।
0: धन्यवाद, हम सेवारा सेवारी से माखन लाला है आवाज बोल रहे।
1: सेवारा सेवारी कहाँ पे भैया जो आपको गांव?
0: ये सागर से धामवानी रोड पर पड़ता है सर, सागर से 20 किलोमीटर दूर।
1: अच्छा अच्छा, तो भैया क्या कर रहे हो आप उधर?
0: खेती किसानी का काम करते हैं सर जी।
1: अच्छा अच्छा, तो अबे क्या चल रहा भैया खेतों में?
0: अबे तो सर सोयाबीन बोया है, तो बस अब आखिरी चल रहा है उसका, आने की पगार पे है।
1: अच्छा अच्छा भैया, वो बीच बीच में भैया जो पानी गिर जाए उधर, तो ऐसे कुछ फर्क पड़ा रहा होगा?
0: जी सर ऐसा भी नुकसान हो जाता है।
1: तो भैया व्यवस्था क्या करे फिर ऐसी कि भैया नुकसान कम हुए?
0: जी सर अभी व्यवस्था के लिए सर जैसे जो लोग उड़दा बोए हुए हैं,
1: हाँ हाँ हाँ,
0: उनको तो ज्यादा नुकसान है, तो और हम सर उड़दा तो नहीं बोए हुए, सोयाबीन बोए हैं, तो अभी वहाँ में नुकसान की कोई परेशानी नहीं है उसमें।
1: अच्छा भैया हम एक चीज और बताएं, अगर अपन परंपरा से हटके भी खेती करते हैं तो थोड़ी सी रिस्क बन को जरूर लेते हैं, मनो कई बार ऐसा हो जाता भैया कि उसमें फायदा बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाऊ थे।
0: जी जी,
1: तो हमारे कहते के जो कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ देते हैं बताते हैं कैसी कौन सी फसलें लाई जाए, जो मट्टी भी अपन एक एक फसल लेते लेते मट्टी भी उगता जाऊ थे, वो भी उर्वरा शक्ति जितनी रेत है वो फसल अपने हिसाब से ले चुकी होते, तो फसलें बदल दो तो उनमें भी फायदा हो जाता है भैया।
0: जी सर,
1: तो ऐसे बारे में भी सोचिए भैया आप।
0: जी जी, हम सुनते रहते सर आपके किसान माड़ी में जो भी आते हैं,
1: हाँ हाँ हाँ,
0: उनके परामर्श को अपन सुनते हैं।
1: काय भैया उनके परामर्श ऐसे जरूरी रहते हैं कि भैया रिसर्च करते रहते हैं, शोध कार्य में लगे रहते हैं।
0: जी सर,
1: और अब हम आपसे पूछ रहे हैं अटका।
0: जी सर बने हैं तो हम बताते हैं।
1: अटका कह रहा है कि लाल लाल झुमको मैंने हाथ बढ़ाओ तुम खो, तुमने काट खाओ हम खो, हमने खा लाओ तुम खो।
0: समझ में नहीं आ रहा है सर।
1: आपके गांव की पगडंडी पे खूब मिल जाते हैं जी, हाँ दिवाली के टाइम, बस इससे ज्यादा नहीं बता सकते हैं।
0: समझ में नहीं आ रहा है सर।
1: कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल उतना ही ले जाके आपको छोड़ दो, तुम्हारा ऊपर भी नहीं बता पाए आप। तो अब बता दो भैया कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे?
0: लोकगीत सर राजीव कुमार रावत जी का सुनवा दी।
1: ठीक है भैया,
0: कोई गाना
1: सुन लो अपनी फरमाइश पे, राजीव कुमार रावत को गाओ भाव जो लोग।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम है फोन करें लोगी सुने।
1: गोविंद राज बोल रहे थे ग्राम सुजानपुर।
0: अच्छा अच्छा, तो गोविंद भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में। कछु अपने बारे में बताओ भैया।
1: सर हम तो खेती किसान करे थे, गोभी लगाए हैं उस टाइम पे।
0: अच्छा, अब भैया पिछली फसलें कैसी रही?
1: फसलें सही रही।
0: कहाँ लगाओ तो अपन ने?
1: हमारे पहले गेहूँ पेना हटे और मूंग हटी।
0: नहीं अब ये खरीफ में कहाँ लगाओ ये सोयाबीन और उड़द कैसी है?
1: उड़द नहीं लगाए हम, सोयाबीन है तो सोयाबीन तो खराब होगा, गोभी लगी है और मूली लगी है।
0: अच्छा अच्छा, चलो भैया ठीक है, अब सब्जियों की तैयारी करें अपन। सब्जियों की खेती जो है वो अच्छा मुनाफा देते है भैया, अगर जैसे जो अगेती सब्जी है अपन ले ले, जैसे मटर है और ये अपनी गोभी की बात कर रहे हैं, पत्ता गोभी है, तो इन सब्जियों से भैया अच्छी आय अपन को मिल जाते है।
1: हाँ।
0: और भैया आपके परिवार में को है?
1: हमारे परिवार में हमारी एक बहन है और मम्मी।
0: अच्छा चलो भैया, मतलब छोटा ही परिवार है आपको, ब्याह नहीं हुआ है? चलो भैया, कम उम्र कहा ही मतलब आपकी?
1: हाँ कम उम्र।
0: तो गोविंद भैया बताओ, आज फरमाइश का लेके आए हो?
1: फरमाइश जिस राज पटेल है वो कौन सी भी लोग की सुनवा दी।
0: बिल्कुल भैया, आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं। और अब सुन ले भैया आज को अटका
1: है,
0: सुनो ध्यान से भैया। कई लाल लाल झुमको मैंने हाथ बढ़ाओ तुमको, तुमने काट खाओ हमको और हमने खा लाओ तुमको।
1: करोना तो नहीं सर?
0: भैया करोना तो नहीं, जो थोड़ा सा मतलब करोना ही जैसो समझ लो।
1: निब्बू?
0: हाँ हाँ निब्बू, नहीं निब्बू लाल हो थे का?
1: छोटे भाई टमाटर कुछ खतरा वालों काम नहीं है, खतरा समझ में आ रहा।
0: हाँ बस भैया थोड़े से लेगा पहुँचे जा रहे।
1: मिर्ची? मिर्ची
0: हाँ हाँ, मिर्ची में भी भैया कांटों को कोई काम नहीं है।
1: लाल कलर को होते?
0: लाल कलर को होते भैया।
1: अभी टाइम पे है?
0: बस आ गई बार है समझ ली। गांव की गलियों में खेतों की मेड़ों पे भी मिल जाते हैं।
1: देर तो नहीं?
0: देखो भैया सही जगह पहुंच गए आखिर।
1: हाँ।
0: हैं जो जरिया के बेर होते हैं।
1: हाँ हाँ वो थे।
0: हाँ
1: मैं तो हमारे मैं लगे और हम भी खेत में बैठी थी ये देख रहे।
0: देखो भैया बिल्कुल
1: तो खाई गई है।

0: हाँ तो सभी को भैया पसंद होते थे तो अच्छे लगा था खावे में है, मन भी ललचाऊ थे भैया और जीभ भी ललचाऊ थे। वो मनो जैसे ही हाथ बढ़ाओ भैया तो हाथ में काट खाओ भैया उनके कांटे
1: भाव कांटे लग जाते थे।
0: मनो भैया खावे बिना नहीं मानत अपन हो रहे
1: नहीं मानत।
0: चलो भैया अच्छो लगो आपने ये अटका को सही उत्तर बताओ और अब आपकी फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं देशराज पटेरिया को गाओ।

0: तो जयशेखर भैया कार्यक्रम के समापन की तरफ अपन आ गए हैं।
1: भैया मनो आज को अटका बड़ो नोनसो हतो और एको भेजो हतो भैया धन प्रसाद तिवारी ने बांदरी जिला सागर से।
0: तो इनने अटका भेजो तो कि लाल लाल झुमको मैंने हाथ बढ़ाओ तुमको, तुमने काट खाओ हमको, हमने खा लाओ तुमको।
1: बहुत ही नोनो अटका हतो भैया।
0: और एको सही उत्तर हतो जो जरिया वाले पके लाल बेर होते हैं वो। तो कछु श्रोताओं ने एको सही उत्तर भी बताओ भैया।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल। और हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं बेबी भैया, अगर आपके पास ऐसी अच्छे अच्छे अटका हुए जो पहले ना सुने हुए उन अटकों को आप आकाशवाणी सागर तक जरूर पहुंचा दो। अगर आप आकाशवाणी सागर में अटकों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना चाह रहे हो तो हम व्हाट्सएप को नंबर बताए दे रहे हैं। व्हाट्सएप को नंबर है 9770432297। और अगर भैया आप चिट्ठिया लिखना चाहते हो तो चिट्ठिया के ऊपर लिख दो अटका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर मध्य प्रदेश।
0: और यही के संगे अब हो गई है चलवे की वेरा। मनो चलवे के पहले बता रहे हैं कि आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से फोन पे बातचीत कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी
1: और हम भैया जयशेखर।
0: कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दौतो हेमंत तिवारी ने और कार्यक्रम की प्रस्तुति हती जयशेखर की। और जयशेखर भैया अब अपन सभी श्रोताओं से लेते हैं आज्ञा और करते हैं
2: राम राम, राम।

फोन करें, लोकगीत सुने। अभी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे थे। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें फोन लगा सकते हैं आज शाम 4 बजे 240-845, ये है हमारा नंबर और STD कोड है 075582। तो हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का। कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने में शाम 4 बजे। ये आकाशवाणी सागर है। इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूं तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुंचा दिया
2: जी।
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताज़ा कर दी
2: जी।
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज।

0: आयुषी और मेहू लिखते हैं।
1: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की। और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया। ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
0: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं की, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
0: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है, थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला प्रश्न था, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है?
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेने। स्टेथोस्कोप नाम 2 ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है?
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली मांद।
0: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे।

0: उसने सोचा
1: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
0: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
1: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद,
0: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
1: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
0: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
1: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
0: उसने सोचा,
1: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
0: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
2: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
3: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है,
1: देखते हैं।
2: अरे वो भी अचानक?
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो दुर्गा मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे।
2: हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं चला क्या क्या मसला है,
3: ठीक है
2: बाहर
3: भगवान से
2: क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा।
1: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया।

0: सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
1: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
0: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
2: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
3: अरे वो हमारा गौरव है,
4: हमारा गौरव है।
2: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा, मेजर धन सिंह थापा।
0: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
4: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: जब तक सूरज चांद रहेगा,
5: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
2: भारत माता की
5: जय,
2: भारत माता की
5: जय।
6: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
7: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
6: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
7: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
6: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
7: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
6: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
8: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
9: जय हिंद धन सिंह, हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
8: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
9: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
8: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
9: तुमने ठीक सुना है धन सिंह, हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर श्री जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ।

0: हमारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
1: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
0: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक यू सर।
2: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
3: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
2: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
3: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
4: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
5: सब, हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है।
6: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी सहायता
5: मुझे।
6: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
7: सिग्नल ऑफिसर वेदिया दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
6: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
7: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
6: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
8: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
9: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
6: सुनो, रुको रुको रुको, यहाँ पे कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है। तो संभालो अपनी बंदूक और एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर।
10: जय मां काली,
11: जय
10: मां काली, फायर।
2: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
3: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
12: ये

0: 手套。
1: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
2: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
1: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
2: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: माँ, देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
4: चिट्ठी, ला दिखा तो।
3: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे
5: अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों
3: देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। देखो गांव वालों को कोई चिट्ठी आई है,
6: जिंदा है। अरे बहुत खुश हुआ बेटा, जिंदा है धन सिंह थापा।
2: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परम वीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
7: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
8: जगबंधु,
7: चेतना,
8: अर्शद,
7: सौम्या,
8: प्रसून
7: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
8: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने की रिकॉर्डिंग आज शाम 4 से होगी। यदि आप इस कार्यक्रम में फोन लगाना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 240-845 इस नंबर पर। हमारा STD कोड है 075582। और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। अनुप्रसारण होगा हमारे मुंबई केंद्र से।

दिल्ली सिक्स का गाना आप सुन रहे थे, रेखा भारद्वाज और एस सुजाता मजुमदार श्रद्धा पंडित की आवाजों में, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति, करसन सक्रथिया और साथियों की आवाजें, महबूब के बोल स्माइल दरबार का संगीत।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राग।

0: दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उससे एक सितारा, चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
0: हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेलुलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
4: हम तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
3: इंतजार कीजिए,
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।